0: गरेको भए होइन, गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423159।
3: बैंकले कभैलाई कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन। यदि कसैले कसै माध्यम बठियाईलाई तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या, उहिले तुमलाई ठग्दो खोज्जाछ। सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरू। उनीहरू विवरण मागिभर बैंकमी सोधौ, सतर्क रहौ, ठगी बठिएको छौ।
4: सिद्धार्थ बैंक बठियाई, जनहितमै जारी सन्देश।
5: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सदैव भरिलाई।

0: के तपाईलाई थाहा छ,
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: से कबू का पिए रही था कबू पेंसिल रही था कबू झल फटाका आज था का कना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417
4: एसईई मा मौका परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको जरूरी सूचना
5: भीमडट्टा नगरपालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको साझेदारीमा सञ्चालित महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अन्तर्गत 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सामान्य चिकित्सा नेत्र विज्ञान डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन भइरहेको जानकारी गराइन्छ
4: साथै शैक्षिक सत्र 2083-84 प्रमाणपत्र तह नेत्र विज्ञान अफ्थाल्मिक साइन्स मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी कार्यक्रममा केही सीट रिक्त रहेको हुँदा एसईको मौका परीक्षामा सम्मिलित प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला
5: भर्ना हुने विषयहरू
4: मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी
5: नेत्र विज्ञान ओए
4: अनलाइन फारम भर्ने मिति 2083 असार 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म आवेदन शुल्क ₹1,000 मात्र
5: थप जानकारीको लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर सम्पर्क फोन नम्बर 0969900044 9857880044 र 9762833921 वेबसाइट www.mahakalishikshalaya.edu.np

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस टिकापुर में योग साधना केन्द्र तमाम केन्द्र में कार्यक्रम करके मनाई। देश विकास में पत्रकारिता के योगदान महत्वपूर्ण रहल प्रदेश प्रमुख नजीर मियां के कहाई। थारू संस्कृति संरक्षण के लक्ष्य सरकार से कानूनी ओ बजट संशोधन हुई पर्ण में सरकार वाला हुकरण के माग। नेपाल प्रवेश से समेत नेपाली झंडा फहराइटी। खखरौला भंसार आंध्र पांजर सरसफाई नेकपा एमाले से पार्टी पुनर्गठन के लाग धनगढ़ी में सुझाव संकलन। पूरा खबर स्वास्थ्य वृद्धि अवस्था के लाग समेत योग कहना नारा के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नेपाल में तमाम कार्यक्रम करके आयोजना करके देशभर मनाई बात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हरेक वर्ष जून 21 तारीख के दिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम करके मनाई बात। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा से सन् 2014 के निर्णय अनुसार सन् 2015 में जून 21 से लेके नई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई शुरू कर लग हो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समेत दामोदर दास मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ के 69वीं महासभा में योग सबको जहान के लग सदीमान के लग आवश्यक रलक ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषणा करना प्रस्ताव करल हई। ई प्रस्ताव में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोईराला पहल समर्थन करल पाछी यूरोपियन यूनियन लगायत के संयुक्त राष्ट्र संघ के थाई राष्ट्र समेत राष्ट्र से समर्थन करल बताइल बा। संघ के घोषणा करलक दिवस मध्य समेत 90 दिन में 177 देश से समर्थन करना कीर्तिमान से योग दिवस कायम करल बताइल बा। सन् 2016 से लेके 21 जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई आयल बा। नेपाल में 2036 माघ 1 गते से लेके सूर्य उत्तरायण लग्न दिन के अवसर में पार्के योग दिवस मनाइना करगिलक हो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 6 महीना के योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के अध्ययन हुई आयल बा। शंकर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के संस्कृति केन्द्रीय विभाग अंतर्गत के योग विषय के अध्ययन एवं अध्यापन शुरू करा सकल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रमुख नजीर मियां पत्रकारिता क्षेत्र में अनुशासित बौद्धिक समेत रलक ओर से देश विकास में भारी योगदान रहना बटवागिल बा। नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति के 500 साधन सभा के उद्घाटन करती प्रदेश प्रमुख मियां से पत्रकार हुकरण के आपन बात सुनैन और बात सुनना समेत करती रहल बटवागिल बा। नेपाल पत्रकार महासंघ के केन्द्रीय उपाध्यक्ष नीटू पण्डित से प्रादेशिक संरचना सशक्त हुई नैसेकलक बटोईटी मीडिया के विकास के लाग राज्य के दायित्व पूरा नई हुईलक बटोले बाट। राज्य संरचना में मीडिया के विकास भूलल में गुनासो करल बाट। पत्रकार से सामाजिक संजाल मार्फत प्रतिस्पर्धा करना परल बटोईटी। भ्रामक सूचना के समेत ढेर पत्रकारिता है असर पड़ते रहल बटवागिल बा। पहले मीडिया संकट में परल मनो ई लगैना सत्ता में अब फे समय सरकार से नीतिगत रूप में मीडिया है धराशय बनैना आवाज दबैना खोजलक में महासंघ आंदोलन में समेत थरियाल। पंडित बटोले बाट कार्यक्रम में महासंघ के केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र बलायर पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश के अध्यक्ष शुक्र समेत ऋषि चौलगाई सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रहरी प्रमुख सानुराम भट्टराई पूर्व केन्द्रीय सचिव हेमकर्णा बिखा पूर्व केन्द्रीय उपसभापति चित्रांग थापा पूर्व केन्द्रीय सदस्य मनमोहन स्वार प्रेस काउन्सिल के नेपाल के पूर्व केन्द्रीय सदस्य हरिजोशी कर्ण शाह दिलबहादुर छन्त्याल लगायत से वर्तमान समय में प्रेस ऊपर सरकारी असहयोग से समेत समस्या हुई तिरहाल चर्चा करबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष भरत शाह के अध्यक्षता में हुई साधन सभा में स्वागत उपाध्यक्ष मान बहादुर सावतकर लहाई कलसी संचालन महासचिव शिवराज भट्टकर लहाई साधन सभा में सुदूरपश्चिम के अगुआ पत्रकार हुंकरा चित्रांग थापा मनमोहन स्वार यज्ञराज यात्री लक्ष्मीराज पांडे माधव सिंह धामी हरिप्रसाद जोशी वीरबहादुर चन्द खेम भण्डारी केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेद बाक्सन सिद्धराज भट्ट डीआर पन्त संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन शाह निवर्तमान अध्यक्ष योगेश रावल हे सम्मान करगिल बा संविधान सभा सदस्य मालामती राणा थारू कला संस्कृति प्रबर्धन के ला कानून बना के तीनों तह के सरकार से बजट विनियोजन करे पना बतवागिला टीकापुर सिटी हल में चलती रलक थारू संस्कृति मेला महोत्सव में आयोजित संवाद में बोलती राणा से अशिन बटोई लेखै संवाद में सहभागी अधिवक्ता नाथुराम कठरिया नेपाल में हुईलक भाषा भाषी केलाक देश केलाक फुलबारी हुई बटोले संविधान में मौलिक हक के रूप में भाषा संस्कृति के संरक्षण के व्यवस्था रलक ओर से मेला महोत्सव के समेत संस्कृति विकास हुई रहा बटवा गिलवा थारू कल्याणकारी सभा क्षेत्र नंबर एक के उपसभापति में रमेश चौधरी से कला संस्कृति पहरान के हिसाब से थारू समुदाय धनी रहा बटोले गीतकार तथा शिक्षक ठाकुर प्रसाद चौधरी मेला महोत्सव करबेर मनैन ऐना रलक ओर से यी स्थानीय प्रकृति और संस्कृति प्रबर्धन हुईना बटोले वहां थारू नमुआ समेत वस्तक नेवार जाति सांस्कृतिक रूप में धनी रहा बटवा गिरबा थारू कल्याणकारी के केन्द्रीय सदस्य राजकुमार चौधरी समेत से थारू संस्कृति बिर्सन नाइफिना बटोटल खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पाछे फेर से एबी सुनचिरबी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर नगरपालिकाको निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड बारे अत्यन्त जरूरी सूचना टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू वड़ा नम्बर 2 असार 7 गते विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वड़ा नम्बर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वड़ा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किङ, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेडस टीकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के महाधिवेशन अटवार केसे दिन नै चितवन के सर्वमुकाम भरतपुरमा शुरू गर्ति बा। महाधिवेशन के अन्तिम तयारी पूरा हुलक रासोपा चितवन के अध्यक्ष मिनी माधव खनाल जानकारी देले बाटै। महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह केलक भरतपुर महानगरपालिका 10 स्थित के जिल्ला प्रहरी कार्यालय आगे गेस्ट हाउस चौरमा जर्मन प्राविधिमा आधारित अल्मुनियम संरचना युक्त डोम निर्माण करगिलबा। करीब 3000 वर्गमीटर क्षेत्रफलमा उ डोम निर्माण करगिले हो। रासपा के ब्यानर प्ले कार्ड उस समय 93 नव विवाहित दुल्ही जस्ते भरतपुर सदा गिल्बा प्रतिनिधिकरण स्वागत गर्न ठाउँ ठाउँमा स्वागत गेट निर्माण करगिल्बा महाधिवेशनमा भाग लिन देशभरिक प्रतिनिधिहरूका भरतपुर पुग्तिरहलबाटै अथवा अर्कै दिनभर जारी रहन बताएगिल्बा महाधिवेशनमा 3500 प्रतिनिधिहरूकरण चितवन केलक 300 से ढेर होटेलमा धरना व्यवस्था मिलागिल्बा। भारतमा चाहिँ नेपाल प्रवेशद्वार नेपाली झण्डा समेत लगागिल्बा युवा उद्यमी कीर्त ठकुलाकै सहयोगमा नेपाली प्रवेशद्वार खखरौलामा नेपाली झण्डा लगागिलेको देशकै सीमा समेत नै सिके चिन जाए ओ देशभक्ति भावना हुए कहिके प्रवेशद्वारमा दुई थो झण्डा ओ मोहना पुलमा एक थो झण्डा लगागिल बटवागिल्बा झण्डा बनाएबेर झण्डा बनाएबेर 20,000 लगानी लागल ठकुला के कहाईबा। टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी से झण्डा के सिमाना चिन्हैना काम करला कोर से झण्डा बनैना ठकुला है धन्यवाद देले बाटै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरी लगायत के स्थानीय के उपस्थितिमा झण्डा लगाके राष्ट्रिय गाना फे समेत बजागिल रह साथे स्थानीय युवा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी के सहभागितामा शक्ति भन्सार कार्यालय आन्दर फान्दर सरसफाई फे करगिल पत्रकार भीमबी का जानकारी देले बाटै। नेकपा एमालेकी पार्टी पुनर्गठन के लाख सुझाव संकलन गर्न उद्देश्य से सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत प्रदेश स्तरीय भेला शनिचर के धनगढ़ीमा शुरू हिल्बा। भेला से सुदूरपश्चिम प्रदेश के एमाले नेता कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवी उपकरण के सहभागिता रहल बतवागिल्बा। भेला के उद्देश्य फागुन 21 सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के समक्ष गर्न के साथै पार्टी पुनर्गठन के लाख सुझाव गर्न रहल एमाले महासचिव शंकर पोखरेल जानकारी दिले बाटै। सुझाव संकलन कार्यदल के संयोजक रामबहादुर थापा सहित के कार्यदल के समेत समस्या विष्णु प्रसाद पौडेल शंकर पोखरेल ओ पृथ्वी सुब्बा गुरूङ फे समेत भेलामा सहभागी रहल बतवागिल्बा। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट सार्वजनिक हुई लगत्ते सत्ता साझेदार केल नै हुके सरकार के नेतृत्व करती रलक कांग्रेस भित्तर के असन्तुष्टि फे चल्ती बा। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले के औपचारिक रूपमा नै बजेट प्रति के आपन दृष्टिकोण सार्वजनिक करल बेला सत्ता साझेदार एमाले के से बजेट संशोधन गर्न निर्णय करल बटवागिल बा। प्रदेश सरकार के से लानल बजेट सरकार के नेतृत्व करती रहल कांग्रेस के सांसद हुकरा फे असन्तुष्टि पोखल बतागिल्बा। खोज खबर माई घरी विश्राम विश्राम पास फेर से भी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीका प्रेम एफएम।
4: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा असमानता बिग्रदो स्वास्थ्य एचआईभी एड्स बलात्कार घरेलु हिंसा बहुविवाह आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक शिक्षक समाजसेवी बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान
5: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त
7: मैनै जाइ उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै नै गर्छु
6: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो यहाँ हेर ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तुम्हें अब भी जाए।
0: याद गर्वी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417। विश्राम पासे फिर से स्वागत बा। हाल कोशी प्रदेश के कुछ स्थान में मानसूनी वायु के प्रभाव रहल बा कल से देश के और भूभाग में पश्चिमी तथा स्थानीय वायु के प्रभाव कायम रहल बा। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल देश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बा कल से तराई भाग में भर आंशिक मौसम बदलना बा। कोशी बागमती गंडकी तथा कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान में हल्का वर्षा होती रहल बा। महाशाखा से आज दोपहर के देश के हिमाली तथा पहाड़ी भाग में और कोशी प्रदेश के तराई क्षेत्र में साधारणतया मौसम बदलने बा। मध्य प्रदेश और बागमती उगंदकी प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलने बा कल से लुम्बिनी और सुरपश्चिम के तराई भूभाग में मौसम मुख्यतया सफा रहने बा। औस्तगत दोपहर के कोशी प्रदेश औस्तगत हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में ओ बागमती गंडकी प्रदेश के हिमाली भूभाग में कुछ स्थान में मेघगर्जन चट्यांग सहित मध्यम वर्षा हिमपात के संभावना बा। कोशी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई क्षेत्र में एक दो स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल महाशाखा से जनायल बा। महाशाखा के अनुसार लुम्बिनी ओ समेत सुरपश्चिम के प्रदेश के तराई के कुछ स्थान में तातु लहर के संभावना बा कल से बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई क्षेत्र में कुछ स्थान में तापक्रम बढ़ने संभावना रहल बा। सुरपश्चिम प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षक ओम बहादुर राणा से स्वाभाविक अस्वाभाविक रूप में करलक काम काज में सरुआ के निर्णय बदर समेत हुई बा। प्रहरी वितर के बिचौलिया मार्फत आर्थिक असूली करती काज सरुआ करगिलक विषय में सार्वजनिक खुलपासे प्रहरी प्रधान कार्यालय के निर्देशन में ओ निर्णय कानून नहीं करना कहल बताया गया बा। प्रहरी प्रधान कार्यालय के निर्देशन अनुसार मापदंड विपरीत करगिलक काम काज सरुआ बॉर्डर समेत हुईलक सुरपश्चिम प्रदेश के नायक महानिरीक्षक सुमन सानुराम भत्राई जानकारी दिले बाट वहां के अस्वाभाविक रूप में काज सरुआ हुईलक पाइलमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय से ओ निर्णय समेत कानून नहीं करना निर्देशन करल बताया गया बा। यह समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस टीकापुर में योग साधना केन्द्र से तमाम कार्यक्रम करती देश विकास में पत्रकारिता के योगदान महत्वपूर्ण रहल प्रदेश प्रमुख नजीर मियां के कहाई। थारू संस्कृति संरक्षण के लग सरकार से कानूनी और बजट के संबोधन हुई पन्ना में सरकार वाला हुकरण के मांग। नेपाल प्रवेश द्वार में नेपाली झंडा फरागिल खखरोड़ा भंसार आज पादर सफाई नेकपा एमाले से पार्टी पुनर्गठन के लाग धनगढ़ी में सुझाव संकलन। लिटा बखलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे नेपाली भाषा में खबर संक्षेप सुन सकबी आज के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते विराम। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
8: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
0: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
8: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
0: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
8: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
0: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
8: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको
7: उपचार,
9: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
7: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर।
7: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
9: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72।
10: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वनन्दी गोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
11: अधि गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
10: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी यनी सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसेकले कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
11: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
10: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 9864 41208 ओ 9846 39261।
12: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
13: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा।
1: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ एमडीबीएस एमडी इन्टरनल मेडिसिन डीएम कार्डियोलोजी।
2: डाक्टर आउने दिन असार 7 गते आइतबार समय बिहान 10 बजेदेखि
1: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा आउँदै हुन्छ।
0: उपचार हुने समस्याहरू
1: हृदयघात, हार्ट अट्याक, उच्च रक्तचाप, धड्कन अनियमितता, मुटुमा दुखाइ वा जलन, स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या, कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या, हात खुट्टाहरू झमझमाउने, मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप, एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप, सुगर, थाइराइड, दम, निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान,
0: साथै मुटुको इको, रगत जाँच र इसिजी पनि गरिन्छ। थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 9826014306 र 9846349785। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली।
3: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
4: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान गैना जबरजस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाइ देना बोले नाइ देना जैसिन गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई त
3: ऐसी गतिविधि कोई कई ना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
4: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
3: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर। अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते र 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: आओ आओ, तू पायलट से आई ना माता झील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
2: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफर रखने, सर लग के घूमत रहते हूँ, जैसे 6 साल लग में सर हल्का तो नहीं करें। मोर सपो का के था पहले तो पायलट जा के।
1: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना?
2: नहीं चलेना सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा बुरा से कहो मोर सपो देव गोपाल से वही ना चलाए नहीं बिठा तपो मूला से फिर वाकर मरहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ सारे पकड़ानी भी
2: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जाग से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास आसम थे सप्पा दस सकत वह वर्ष मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाई नहीं भी बेंतन इतना माल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं खजाना से भी था
3: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार गई सप्पा है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासे संपी सप्पा दस सिट्ठा संभव हुई सम सप्पो फोटो खींची व पहचान कलाक विज्ञापन से संपर्क करी
4: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता लगाए लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सकता
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिल रहेठ कबु झनै फटाका आजिठ काकना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झ्वाला आन्ल से त लड़का सामान निहरा
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरैठी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झ्वाला लान नि छिठो
1: अरे कहाँ से नानम थ
0: कहाँ से लन बो ओट का टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झ्वाला आन्ल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही ना कबू पेन्सिल रहीठिन ना झोला फाटल हुई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान के ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुही, टीकापुर बाजार में देखनु तुही।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हराए।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगलान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कॉपी हेरी थी, ना कबू पेंसिल हेरी थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस कटरास बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: एसईई मा मौका परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको जरुरी सूचना।
4: भीमडट्ट नगरपालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको साझेदारीमा सञ्चालित महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अन्तर्गत 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, सामान्य चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
3: साथै शैक्षिक सत्र 2083-84 प्रमाणपत्र तह नेत्र विज्ञान, अफ्थाल्मिक साइन्स, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, सीएमएलटी कार्यक्रममा केही सीट रिक्त रहेको हुँदा एसईईको मौका परीक्षामा सम्मिलित प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
4: भर्ना हुने विषयहरू
3: मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी,
4: नेत्र विज्ञान ओए,
3: अनलाइन फारम भर्ने मिति 2083 असार 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म, आवेदन शुल्क ₹1,000 मात्र।
4: थप जानकारीको लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर, सम्पर्क फोन नम्बर 0969-59-0044, 98-587-80-044 र 97-642-31-921, वेबसाइट www.mahakalishikshalay.edu.np।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98485518 28
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लग बोटा
1: पेशाब लाटा चर्पी जाए टुका
0: ए रुको नाटा कोशिश हो कल से मैं टॉर्च लाइट वो लट्ठी दिए तू लेख जावो
1: काजे चुनो लट्ठी वो टॉर्च लाइट
0: कहाँ करो रही दाई रात इंदला बाहर निकल पड़ला से वाटवाइल जाए पड़ला से जहाँ फिर टॉर्च लाइट बार खा को लम्बा लट्ठी देखा के हो जाए पड़ा कहाँ करो कि बरखा छेद बा सांप रह सेट था टॉर्च को अजाले सापन देखा सेट दी था वो लट्ठी ठेक ठेक गाँव सुनकर साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूल मैडम सर हूँ साप नुक इतना ठाउसी न्यांग पड़ला से वो काम कर पड़ला से जहा फेठा फुसिया भी पठा गई कर सीखेल बाट का आम छेटवा दुभा झपा अथवा ध्यान घास चलक ठाव में न्यांग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठेक ठेक बजेटी न्यांग पठा गई कर कल बाट
2: साफ बर्खा छाटक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में उपरा बाहर निस्कट
1: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लघ आई सकता विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: आज त पहिला नौकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली
5: तनखा खाइकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु हो भने बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन् भाइका लागि बाल भविष्य योजना तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना वहाँ चाहिँ मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन तसाईले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे
4: ठिक गरिबा आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ
5: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त होइन बुवा सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01597021772 सम्पर्क गर्या

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करत लाख सक्कू जाने सहयोग करी।
3: अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कंचनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: ई लड़का के कब्बू कापी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हरी थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बिरानी म त दिक्क भइसक्यो, कसो कालले छिटो नलाग्यो।
1: होइन चाइनिजो माइलो, के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ, के भएको छ हो तलाई?
0: हेर्नु न, साह्रै समस्या पर्यो क्या। कहिले के रोग आउने, कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसके। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भन्यो। म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लाग्या लाग्या हुन्छ, खानै सक्दैन।
1: तेरी माइला, यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ? त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो।
2: हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्। साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
3: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर, ठकरला रोड, टिकापुर, कैलाली।
4: नि खोया पुग्नु सपदस्तक दरम्याना रसरस अङ्गमा ल्यान पुगासे हिँडेर
5: एक गति न हाम्रो सहयोग कैखल डेन्टीबाटी बिहान मोटरसाइकल घुमाएको धर्ने गरिन
4: बैठा बैठा रम्याना रसरस मर्पा छ बैठाई को एकजना ब्रह्म्याना पकर्क बैठी उपचार केन्द्रसम्म पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोस हुइसक नापुला कोर्से पासे पकर्क बैठक पर्थका
6: ब्रह्म्याना अर्घर हुन कैकमै पकर्क बैठा टु सुनिलजी आफ्ना देशिन मोटरसाइकल स्वयं सेवक हुलक कारण सर्पडंशक ब्रेमेन उपचार केन्द्र लैजिन सजिलो हुल बा
4: एम्बुलेन्स और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकल जो सबको ठमा सजिला पाजी था कतना ठमा मई असक मोटरसाइकल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्म्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुना मेर का सुचाक लगभग एंटी भेनम हुलक उपचार केन्द्र में लै जाए पर्था
5: अपना उम्र जैने करी ना मई द्वार लगा सके राजे
4: वहां न कटलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो खिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
6: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमारा जा जाए नहीं तो ढील हुई थी
7: सफर डस दारल कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच समा सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जा रही सप्प कटलसे मोटरसाइकल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा गरी
8: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
10: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध गरी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुई देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: बालक हराएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 भूपू कमैया शिविर टोल बस्नी मायाराम चौधरी र निशा चौधरी का छोरा 10 वर्षीय गोलू भनेर चिनिने रिदम चौधरी वर्ण गहुँ गोरो उचाई करीब 4 फीट दुवै कानमा सुन लगाएको हरियो टी शर्ट र कालो रंगको हाफ प्यान्ट लगाएको अवस्थामा यही असार 5 गते घर नजिकै फुटबल खेल्न जान्छु भनी हिँडेकोमा हालसम्म नफर्किएकाले देख्नुहुने वा भेटाउनुहुने महानुभावले फोन नम्बर 9824615595 9825603396 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
3: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा।
4: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ एमबीबीएस एमडी इन्टरनल मेडिसिन डीएम कार्डियोलोजी।
5: डाक्टर आउने दिन असार 7 गते आइतबार समय बिहान 10 बजेदेखि
4: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
5: उपचार हुने समस्याहरू
4: हृदयघात हार्ट अट्याक उच्च रक्तचाप धड्कन अनियमितता मुटुमा दुखै वा जलन स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या हात खुट्टाहरू झमझमाउने मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप सुगर थाइराइड दम निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान
5: साथै मुटुको इको रगत जाँच र इसिजी पनि गरिन्छ। थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 9826614306 र 9846739785। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली।

0: चेलि हेदिदै बालाई लोटी पळ्यो भनेके बैंकको विवरण दिया पैसा खातामी आइ जान्छ भन्यो।
1: धैधै बा तुमले लोटी भर्राइ थ्याब
2: आछिन क्या हो रे चेली लोटरी पढ्या त निको हो
1: कभै नभर्या लोटी कसरी पढन्छ बा इसा मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमीले आयाले कभै जनपतिया फोनै आयाला गई आफ्नो विवरण कभै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कभैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन
3: सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ
1: सिद्धार्थ बैंक पठाइ जनहितमी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।
5: एसईमा मौका परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको जरूरी सूचना।
6: भीमडट्ट नगरपालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको साझेदारीमा सञ्चालित महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अन्तर्गत 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सामान्य चिकित्सा नेत्र विज्ञान डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
5: साथै शैक्षिक सत्र 2083-84 प्रमाणपत्र तह नेत्र विज्ञान अफ्थाल्मिक साइन्स मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी कार्यक्रममा केही सीट रिक्त रहेको हुँदा एसईको मौका परीक्षामा सम्मिलित प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
6: भर्ना हुने विषयहरू
5: मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी
6: नेत्र विज्ञान ओए
5: अनलाइन फारम भर्ने मिति 2083 असार 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म आवेदन शुल्क ₹1,000 मात्र।
6: थप जानकारीको लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर सम्पर्क फोन नम्बर 0969900044 9857880044 र 9762833921 वेबसाइट www.mahakalishikshalaya.edu.np।
7: बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी पट्टा नि पैना त
8: अरे गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
7: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
8: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइ कहौ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाइ सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर प्रहरी सिंह सुनार
7: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ अर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864041208 और 9846349261।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संक्षेप 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने कन स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने कुल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोहल्लाब सम्रपात्र और नेपाली पात्र मुफी सुन्टी रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गांवपालिका द्वारा उत्कृष्ट नदी जलन्ना विद्यालय अनुदान जनता महावीर कञ्चनपुर उत्कृष्ट अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता के साथी मंत्री शैक्षिक और सामाजिक विकास के लाग समुदाय संघ सहकार्यकर्ती सिंचाई के लाग हजारों किसान द्वारा कर्णाली में श्रमदान और जर्मनी फीफा विश्वकप नकआउट चरण में

0: प्रखर जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 स्थित अमरावती सामुदायिक वन विक्रम सम्म 2055 सालमा स्थापना भएको हो। वनमा जानकी 8-9 1400 उपभोक्ता वा समुदायिक वन उपभोक्ता खास काठी समेत पूर्व ढकरेटियाबाट वन के समितिको उपभोक्ता के शैक्षिक विकास सामाजिक विकासमा क्षेत्रमा काम कर्तिलोबाट अमरावती सामुदायिक बनुवा वन पैदावार काठी कठुवा ओ काठी बिक्री वितरणसँग सामाजिक काम के क्षेत्रमा फेरि ढ्योर काम कतिलबाट वनकी उपभोक्ता के जीवन संस्था केलाक आवश्यकता धर्म सघना कलबाट सामुदायिक वनकी ग्रामीण विद्युत ट्रान्समिटर कम्प्युटर पिटर खरिद झेन्दार विद्यार्थी पुरस्कार वितरण लगायतकै काम कलबाट यससँग विपन्न उपभोक्ता आर्थिक सहयोग अति विपन्न परिवार लत्ता कपडा फर्निचर फे सहयोग कर्ना कगिलबा सामुदायिक बनुवाकै ट्रान्समिटर खरिदको लागि सहयोग गर्न पाछ ग्रामीण विद्युत विस्तारमा सजिलो हुँदा सामुदायिक बनुवाकै सहयोग उपभोक्ता समेत खुशी हुलक सूर्योदय ग्रामीण विद्युत सहकारी व्यवस्थापक विष्णुनाथ देवकोटा बोटेलबाट अमरावती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाकै अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद अधिकारी फे सामुदायिक बनुवाकै कम्प्युटर प्रिन्टर खरिदको लागि सामुदायिक बनुवाकै सहयोग गर्न पाछ उपभोक्ता सेवा प्रभुमा सहयोग पुलक बोटिलोबाट सामुदायिक बनुवा वन पैदावार वितरणसँग सामाजिक विकासकै क्षेत्रमा काम गर्न लगलगबाट सामुदायिक बनुवा उपभोक्ताकै आय स्तर सुधार जीवन संस्थाकै लाभ कर्तिरहल कार्य मजारलको आगामी दिनमा उपभोक्ता प्राथमिकतामा धर्के काम गर पना उपभोक्ता हुरा बोटिलोबाट राजापुर नगरपालिका व गेरुवा गाउँपालिका गरी 5,000 किसान गेरुवा गाउँपालिका 1 जनकनगर स्थित कर्णाली लदिया थुन्की खेतमा पानी लिनबाट असारकै पहिलो हप्तामा फेरि पानी नै पलक रोपाईको लागि स्थानीय स्रोत साधनकै प्रयोग गरी श्रमदान गर्दै लदिया थुन्की पानी लिनबाट ओखरिया इन्टेक मसे 10,000 हेक्टर सिंचाई क्षेत्रफलमा सिंचाई हुन गर्दै खरिदी गरेर खेतमा पानी नै पोल्पा छ। किसान ट्याक्टरमा झाला पट्याओ काठी लेकी लड्डेमा पुगल रही इन्टेक के नजिक रहला कर्णालीकी भंगालो स्थानीय स्रोत साधन के थुन्के ओखरिया इन्टेक तर्फ पानी लिनबाट धान लगाइने सिजनमा हरेक वर्ष किसान हुक्र लद्या कि अस्थायी बाँकी खेतमा पानी पुगेन कलबाट राजापुर सिंचाई आयोजना के निर्माण कलक राजापुर सिंचाई प्रणाली अन्तर्गत के संयुक्त बुढ़ी कुलुवा सिंचाई प्रणाली अन्तर्गत 12 मौजा रहलबाट राजापुर सिंचाई प्रणाली व्यवस्थित रूपमा निर्माण नै हुलक। हरेक वर्ष जोखिम मोलकै किसानहरूको लद्यमा बाँध भन्ना जाइपना बाटेटा रहलबा पानी कि मुहान डुर बुढिया कुला किन्टे गलक हुलक पानी बुढा कुलासम्म लान जाइपना बाटेटा लग गोला जल उपभोक्ता संस्था से धनबहादुर शाही बोटिलबाट अरू स्थानमा फे स्थानीय रूपमा मुहानमा फे पानी पुरान सिंचाई प्रणालीमा स्थानीय मुहान नै हुलक। हरेक वर्ष जोखिमपूर्ण रूपमा लद्या पठना पलक बोटिलोबाट राजापुर क्षेत्र अन्नके भण्डारमा फे सिंचाई किला स्थायी मुहान नै बनेर किसान दुःख पहिलाबाट नेपाल सरकार स्थायी बाँध हो संरचना बनाएकी सिंचाईकी व्यवस्था गर पर्ना उहाँके कहाई सरकार 7 किलोमिटर स्थानीय संरचना बनेर कि समस्या सदकलाग अन्त्य हुन राजापुर गेरुवावासी जब पानी चाह तब अस्थायी बाँध बाँधकलाग लड्डेमा पुगेकल किसान गुरूप्रसाद चौधरी बोटिलोबाट उहाँ लम्बा समय से पानी के लाग श्रमदान गर्न बाध्य भएको कि कब समकर पर्ना हो थाहा नै हो कि खेतुवा लगिन समयमा फे कुलोमा पानी नै हुलक जोखिम मोल बाध्न बाध्यता हुलक बोटिलोबाट नर्मा पानी के केधिक बढेन परम्परागत रूपमा बेगारी जन श्रमदान कति झल राजापुर सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयकी सूचना अधिकारी विक्रम राई बोटिलोबाट कर्णाली दिया फिजलाको भारी बजेट लगाएकी व्यवस्थापन नै गर्छौं जनता आस्थाको दुःख पल्टिरहल पर्ना बोटिलोबाट लद्याकी ध्योर भंगालोमा फैलिरहल उहाँ एक ठाउँमा संरचना बनाएकी नहुलक बढी भारी बजेट छुट्याएकी व्यवस्थित मुहान बनाइपर्ना उहाँ बोटिलोबाट खोज खबरमा एक विश्राम विषम पाछ फेरि सही विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टिका प्रफेम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 98484 27359 र 98442 43 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
5: बालक हराएको सूचना। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 भुपुकमिया शिविर टोल बस्नी मायाराम चौधरी र निशा चौधरीका छोरा 10 वर्षीय गोलु भनेर चिनिने रिदम चौधरी, वर्ण गहुँ गोरो, उचाइ करिब 4 फिट, दुवै कानमा सुन लगाएको, हरियो टी शर्ट र कालो रंगको हाफ प्यान्ट लगाएको अवस्थामा यही असार 5 गते घर नजिकै फुटबल खेल्न जान्छु भनी हिँडेकोमा हालसम्म नफर्किएकाले देख्नुहुने वा भेटाउनुहुने महानुभावले फोन नम्बर 98241625 95, 98256 93 96 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
0: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपके प्रथम महाधिवेशन शुरू हिलवा भरतपुरके गिस्ता हवर चर्म निर्माण कलक सभाहल स्थित विशेष समारोह बीच पार्टी सभापति रवि लामी छान्यो, पार्टीके वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री वारेन्द्र शाह घण्टी बजाकी महाधिवेशनकै उद्घाटन कल रहे। ओ अवसरमा उहाँको सँग मञ्च मरला अतिथि प्रफेक सँग घण्टी बजेर रहे। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी सभापति गगन कुमार थापा, नेकपा एमालेकी नेता प्रदीप गेवाली, नेपाली ली कम्युनिष्ट पार्टीकी नेता वर्षमान पुन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र प्रपाकी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागीबाट, शंकरकी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीकी अध्यक्ष भूपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीकी अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतकी सहभागी रहलबा। उद्घाटन सत्र शुरू गर्न वर्ष फिर समारोहमा मनयनकी उल्लेखीय उपस्थिति रहलबा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपकी उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगले आफ्न पार्टीकी अब सरकारकी फिर्ना अभियान केलिक नहुके समग्र राजनीतिक संस्कार परिवर्तनकी दिशामा केन्द्रित रला गोटेलोबाट पार्टीकी चौथो वार्षिक उत्सवकी अवसरमा चितवनकी भरतपुरमा आयोजित प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्बोधन गर्दै उपसभापति डाक्टर वाग्ने बारबुटेलोबाट प्रधानमन्त्री वारेन्द्र शाह, राष्ट्रपा सभापति रवि लामी छान्यौ, धेरसिन्द राजनीतिक दलकै शीर्ष नेताको उपस्थिति रलक। उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य धरती डाक्टर वाग्ले राष्ट्रपाकी सिंह राष्ट्रकी संकल्प हो, आकांक्षी न्याय कर्णाजीमा जन्मलक शक्ति मूलक दावी कल्लबाट उहाँके काही जब इमान्दार मनकी राजनीतिक असर लाग्ने हो कि निष्कर्ष निकाल्न लगलको, नागरिकता राज्य बीचकै विश्वासकै पुल भत्कन लगलक के, ओत्र बेला परिवर्तन के चाहना विद्रोहमा बदल्न हो, अगर विद्रोह के लोकतान्त्रिक आवास राष्ट्रपा बनलक कि विगतकी आन्दोलन लगलक, लोकतन्त्र संविधान समावेशिताकै सम्मान कति, उहाँ लोकतन्त्रकै संस्थागत गुणस्तर उत्तरदायित्व सार्वजनिक सेवाकै प्रभाव फेरि कमजोर रलकाउलबाट नेपालकै मुख्य समस्या स्रोत वा सम्भावनाकै अभाव नै हो कि गलत प्रोत्साहन संरचनाहरू जिकिर गति, उहाँ राजनीतिमा पहुँचवाला सफल होइन तर इमदार छिर्न नै सक्ला, प्रणाली बदल पर्नमा जोड़ दिलबाट। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि बिसुन्तिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
6: आइ हो बड्डो घर कहिया सिर्जै भो, पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेक्ल।
7: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू, मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का।
6: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्ट फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो ना, कबू कहूँ घुम जाए तो था पाए।
8: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26।
9: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
10: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
9: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
11: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
10: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
13: याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
12: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
14: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
15: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, सञ्चालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पाछ फ्रेसी स्वागत बा आप खेल खबर। जर्मनी फिफा विश्वकपके नकआउट चरणमा प्रवेश कलबाट समूही अन्तर्गत टोरेन्टो रंगशालामा शनिबार रातकी हुने खेलमा जर्मनी आइभरी कोष्टह 2-1 गोलले अटैकी नकआउट चरणमा स्थान बनेलबाट 4-4 विश्वकप च्याम्पियन जर्मनी 12 वर्ष पाछ नकआउट चरणमा पुगेती दुनू गोल स्ट्राइकर डेनिस उडभन कलबाट वैकल्पिक खेलाड़ीकी रूपमा मैदान प्रवेश कलक। 69 दोस्रो हाफके अतिरिक्त समयमा निर्णायक गोल कल रही इन्स्यागा 30 मिनटमा कप्तान फ्रान्क केसी गोलकर्ती आई भरी कोष्टह शुरूआती अग्रता दिल रहे। पहिलो हाफमा शानदार प्रदर्शन कलक काईभरी कोष्ट, दोस्रो हाफमा ओहोलक्ष्य पन्छेना नै सक्ल। लगातार दोस्रो जितसँग 6 अंक बनेलक जर्मनी शीर्ष स्थानमा वा। पहिलो हार खेपलक आइक भरी कोष्ट 3 अंक सहित दोस्रो स्थानमा वा। इक्वेडर कुराकाओको 1 अंक वा। आइतबार बिहान खुले खेलमा इक्वेडर कुराकोले गोल रहित बराबर खेल्न रहिन्। यी समाचारसँग खोज खबर ओरेली जेनाइसे पहिले खबरकी मुख्य शीर्षक फेर्स एक छ। अमरावती सामुदायिक वन भोक्ता के सारथी बन्टी शैक्षिक सामाजिक विकासका लागि समुदाय संघ सहकार्यकर्ती। सिंचाई के लाख हजारौं किसान द्वारा कर्णालीमा श्रमदान। ओ जर्मनी फिफा विश्वकप के नकआउट चरणमा खोज खबर प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दिए अपकला खोज खबर से मई सीता चौधरी बिदाई टू एक पास 6 बजे के खोज खबर सुन सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
16: रजनी हो वहाँ 62 नंबर लगती बा लिखाओ का अच्छा लिखाओ का
17: मुर्गी दाना देना जा रहा काकर फादर दिए अपना
16: एक तो सपा बा का मुर्गी न फार छे लत्ती से जुड़े से बक्सा की आनो हाली सट्टा
17: तापन हिस्का चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस कर बेन घर भीतर आए लागी कलचे भगेबी
16: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खाड़ी कहीं का भगाए खोज रखो का
17: आरम कीड़ा फटिंगा मुर साफ सीधे निशा कर कहीं का फलाम को जारी लगा पाते तब पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं देखी बेन अपना दाठी दूर रिना
16: हो बिना तो क्या करना हो सब देखती की डर नागर लगना रही था देव सब अपना घूम का बारी वो कल गिनता
17: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं होनी मुखरथी अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई रखी पोती रक्षा करत लाख व अपन बचाव करत लाख साम दसना कर था
18: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाए व नी जीस के साप मन देख डरे था नी चलाख दूर रहसी साप नी दस्त तर मुखर खैना ख्वाजा बाहर निस्कल जाना घास काट बेर ख्याल बेर ड्यांग बेर छू बेर से मनई मही मारकलाक बाट कना समस्क पट्टी रक्षा कना क्रम में साप दस लाख अर्थ मनई सापन व्यक्ति की मारक लाग रह उसी का कर बे फिर साप दस लाख अर्थ
19: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाए लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था
20: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
21: घर त जेन्टेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
6: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
21: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
6: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
21: अब त म ढुक्क
22: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
6: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
23: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज

विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे घोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाकर आनसे कि कतरा सुघर बना।

0: बचपन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: शिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत का कैना हो का
1: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो ना कटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो न कबु कहुँ घुम जाए त थाहा पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रैलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषत हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाख सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कंचनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरती रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाका था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बालक हराएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 भूपु कमैया शिविर टोल बस्ने मायाराम चौधरी र निशा चौधरीका छोरा 10 वर्षीय गोलु भनेर चिनिने रिदम चौधरी, वर्ण गहुँ गोरो, उचाइ करिब 4 फिट, दुवै कानमा सुन लगाएको, हरियो टी शर्ट र कालो रंगको हाफ प्यान्ट लगाएको अवस्थामा यही असार 5 गते घर नजिकै फुटबल खेल्न जान्छु भनी हिँडेकोमा हालसम्म नफर्किएकाले देख्नुहुने वा भेटाउनुहुने महानुभावले फोन नम्बर 9824615595, 9825603396 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
1: बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान पिछाई घरक भिटा हामी निके निउराइ छौ कि का खेतमा सखलाङका लाग मिनी लैजाइ पर्ना रह
1: आब उराइदा डान्ती बादा
2: ल्याल्या मै मिनी बनाकर धैरिया तु लैजा दिएस न
1: हाँ हुइठा दाई ओहो हेरो यहाँ भिटामा त बिलाको बा माटीले सब दिए परौ टिका हाँ सब दिउ
2: मुस्कान सपो काटरलस
3: काबिल काकी काबिल
2: हेर न राकेश मुस्कान न सपो काटलस कल
3: ना क्या काकी तो मुस्कान न्या क्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास का न सुटाई फल सब निका राखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा घर गहना निकब जैना मेकअप फाफसर बना दी ओ हाथक चुड़िया से निकाल दी वाकर कटलक हाथ भर नहीं चलाखना
2: बैठा भैया सबको कटलक ठाव आंजर पांजर चिर का इंजेक्शन ले तान का अथवा मुंह ले सुस का 20 पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबको कटलक घाव आंजर पांजर कटना डगना चुसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कलश ये धर मेरा लान खा वही नितार खा वाकर सबको कटलक ठाम और लगा दी उठा ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझ्नु नानु बुझ्नु
3: बेन काकी रामेश्वर मोटरसाइकल लेखा आएका हिट झट्ट से झट्ट साधन खोज का एंटी भेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्ट सुमर बनाई सेक जाई जा जाए का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी भेनम केन्द्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल .org का वेबसाइट खोलती का तुम्हें हाँ दाता हम कही का हरा पुरा हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल .org वेबसाइट फेक खुला हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में कुछ सर्प दंश उपचार कही जिना रही था हो वहां ले जाए पर मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला
3: लेव लेव लेव काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में वही था रही था झट्टा से झट्टा सर्प दंश उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कला से मुस्कान होना बताई सेक जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डस्ल से मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र में जाकर जान बचाई वहाँ कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रह पड़ा मोल सपो में व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साफ काट से संभव हुई सम कटुया सबको फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से हुक्र सबको विषाह अलग निरलग पहचान कई सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सबको डसलक मन यहाँ बचाई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सबको डसलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जा डाली इन्हीं ऊ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसा पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए छेक्दिखा।
5: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

महाराज परीक्षित अब सृष्टि संबंधी को वर्णन सुन्नु भो वहाँले धेरै संबंध को लागी मा अवतार सन भगवान को धेरै अवतार सन महाराज मत्ति कुर्म बरास्त नरसिम्हम सबामन राम रामोश्च कृष्णश्च बौद्ध कल्कि तथैव च यी दसवटा अवतार चाहिँ भगवान को पूर्ण अंश बताएर मत्स्य कुर्म बराह नरसिंह परशुराम राम कृष्ण बौद्ध कल्कि चाहिँ यो पूर्ण अंश बताएर अर्को अंश बताएर कुन हो अंश अवतार चाहिँ ऋषभदेव कपिलदेव अनि त्यसदेखि पछाडिबाट दत्तात्रेय स्वामी आदि गरिएका चाहिँ अंश अवतार भए कला अंश अवतार भनेको कुन कुन हो भनेर सोद्धाखेरिमा कला अंश अवतारको वर्णन बताउँछु इच्छा कुरेर लमुचुकुन्द विदीय गादिरी दुर्वाम्बरी सगर गय नौषाध्य मान्दात अर्क शतदन्तुरन्ति देवा देवव्रत मुनिर मूर्तयो दिलीप सौभर्य तुङ्क शिविदे बल पीपलाद सार सदत्तव परा भूरिषेण अन्यो विभीषण हनुमत्तेन्द्र दत्त पार्थिषण विद्रम श्रुत देव बरिया यी सबै जब अवतारहरू हाम्रा हुन् भगवान जस्तै प्रकारले गरिकन इच्छाकु राजा मुचुकुन्द विदेह जनक राजा गादी रघु अम्बरीशगर गया नौश मानदाताल का शतधन्नु रंतिदेव भीष्म बलि मूर्ति दिलीप और शौबरी उत्तंक शिविर देव पिप्लाद सारस्वत उद्धव व्यास भूरीषण विभीषण हनुमान शुक आर्षण विद्र सुरत देव आदि गरिएका सारा यी चाहिँ कला अंश बताउन हुन् कस्तो कला अंश बताउन भन्दा सोह्र कला मध्येमा एक कला लिएर जन्मी बसेको कहीं पूर्ण कला कहीं अर्ध कला